0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज, एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत हम धर्माधीक्षकों की 16वीं धर्म सभा, एक सिनोडल कलिसिया, एकता, सहभागिता और प्रेरिताई के अंतिम दस्तावेज पर अपनी चर्चा कर रहे हैं। सिनोडल कलिसिया के अंतिम दस्तावेज के भाग 5, जिसका शीर्षक है अतः मैं तुम्हें भेजता हूँ, की शुरुआत करते हुए हमने अपने विगत प्रसारण के अंतिम भाग में कहा कि सिनोडालिटी का प्रशिक्षण और कलिसिया की सिनोडल शैली लोगों में इस बात की सचेतना लाती है कि बपतिस्मा में मिले उपहारों को हमें सबों के लिए उपयोग में लाने की जरूरत है, वे अपने में गुप्त या छुपे हुए नहीं रह सकते हैं। श्रोताओं, प्रेरितिक शिष्यों का प्रशिक्षण ख्रिस्तीय बपतिस्मा संस्कार में शुरू होता है और उनमें बना रहता है। हर व्यक्ति के विश्वास की यात्रा में हम बहुत से लोगों, समूहों और छोटे समुदायों से मिलन को पाते हैं, जो उन्हें ईश्वर के संग संबंध पोषित करने में और कलिसियाई एकता से उनका परिचय कराता है। माता पिता और परिवार के सदस्यगण, दादा दादी, धर्म शिक्षक और प्रचारक, धर्म विधि के अगुवे और वे जो करुणा के कार्यों में मदद करते हैं, उपयाजक, पुरोहितगण और स्वयं धर्माध्यक्ष। कभी कभी बपतिस्मा की धर्म विधि के एक बार समाप्त हो जाने पर समुदाय के संग संबंध कमजोर होने लगता है और प्रशिक्षण की अवहेलना होती है। यद्यपि ऐसा कुछ नहीं है, हम एक बार हमेशा के लिए यीशु ख्रिस्त के शिष्य नहीं बनते हैं। यह हमसे निरंतर परिवर्तन की मांग करता है, प्रेम में बढ़ने की, जब तक हम मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त ना कर लें और पवित्र आत्मा के उपहारों के लिए खुला होते हुए, जिससे हम आनंद और जीवंत विश्वास का साक्ष्य दे सकें। यही कारण है कि हमें इस बात की पुनः खोज करने की आवश्यकता है कि रविवार ये ख्रिस्त्याग कैसे हमारा निर्माण करता है, हमारे निर्माण का विस्तार यीशु ख्रिस्त के अनुरूप हो, यह अमूर्त मानसिक प्रक्रिया के रूप में ना हो बल्कि उनमें हमारा एक होना हो। बहुत से विश्वासियों के लिए केवल रविवार ये यूखरिस्त कलिसिया के संग जुड़े रहने का एक माध्यम बनती है। वे इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि उसे विशेष रूप में अर्पित किया जाता हो, खास रूप से प्रवचन पर ध्यान देते हुए और हर एक की सक्रिय सहभागिता के द्वारा, जो उसे सिनोडालिटी का स्वरूप बनाता है। मिस्सा बलिदान में हम सिनोडालिटी का अनुभव करते हैं, जो कलिसिया के द्वारा हमारे जीवन में कृपा स्वरूप ऊपर से आती है, जिसे हम ग्रहण करते हैं। यहाँ हमारे लिए सिनोडालिटी हमारे प्रयासों के फलस्वरूप होता है। हम किसी एक के नेतृत्व हेतु और कुछ एक लोगों की प्रेरिताई के लिए कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सभी कोई दो आयामी मेज, वचन और रोटी के भागीदार होते हैं। एकता, प्रेरिताई और सहभागिता का उपहार, जो सिनोडालिटी के 3 मुख्य बिंदु हैं, जिसे हम हर यूखरिस्त में अनुभव और नवीन होता पाते हैं। श्रोताओं, एक निवेदन जो सिनोडल प्रक्रिया के दौरान मजबूत रूप में सभी संदर्भों से उभर कर निकला, जो यह था कि ख्रिस्तीय समुदाय के द्वारा दिए जाने वाला प्रशिक्षण अपने में समग्र, निरंतर और साझा करने वाला हो। ऐसा प्रशिक्षण सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित ना हो, बल्कि यह खुलेपन और मिलन, साझा और सहयोग, चिंतन और सामान्य रूप में आत्म परीक्षण की योग्यता को भी प्रोत्साहित करता हो। इसके परिणाम स्वरूप प्रशिक्षण को चाहिए कि वह मानव जीवन के सभी आयामों, बौद्धिक, भावनात्मक, संबंधपूर्ण और आध्यात्मिकता को समाहित करे और ठोस अनुभवों को भी अपने में संलग्न करे, जो उचित रूप में साथ साथ चलते हैं। पूरे धर्म सभा के सिनोडल प्रक्रिया में इस बात पर भी जोर दिया गया था कि हमें एक सामुदायिक और साझा प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिसमें नर और नारियां, लोक धर्मी समर्पित जीवन के लोग, अभिषिक्त, प्रेरित और पुरोहिताई के उम्मीदवार शामिल हों, जिससे वे पारस्परिक रूप में ज्ञान और सम्मान में बढ़ते हुए आपसी सहयोग कर सकें। यह हमारे लिए उपयुक्त और सक्षम प्रशिक्षण दाताओं की मांग करती है, जो अपने जीवन के द्वारा उन बातों का साक्ष्य प्रस्तुत करने के योग्य होते हैं, जिनकी शिक्षा वे अपने वचनों के द्वारा देते हैं। केवल ऐसा करने के द्वारा हम प्रशिक्षण को सही अर्थ में फलहित होने और उसे परिवर्तित करने वाला पाएंगे। हमें अनुशासन युक्त शिक्षा के उस योगदान, वयस्कों में सीखने के स्वरूप, शिक्षण के तौर तरीके और व्यक्तिगत तथा समुदायों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, जो हमारे लिए बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। अतः हमें चाहिए कि हम प्रशिक्षु और प्रशिक्षण पर व्यय करें। श्रोताओं, कलीसिया के पास प्रेरितिक शिष्यों के प्रशिक्षण के लिए पहले से ही बहुत से स्थल और संसाधन हैं। परिवारें, छोटे समुदाय, पल्लियां, कलीसियाई संगठने, लघु गुरुकुल और धर्म संघ के समुदाय, शैक्षणिक संस्थान और इसके साथ ही हाशिए पर रहने वालों के लिए कार्य और सेवा करने के स्थल, इसके अलावे प्रेरिताई और स्वयं सेवी पहले, इनमें से हर स्थल में समुदाय अपने साक्ष्य के माध्यम शिष्यों के प्रशिक्षण और उनका साथ देने में अपनी योग्यता को प्रकट करती है। यह मिलन बहुत बार विभिन्न पीढ़ियों के लोगों को एक साथ लाती है, अति युवाओं से लेकर अति बुजुर्गों को कलीसिया में किसी का यूं ही प्रशिक्षण नहीं होता है। हर कोई अपने में एक सक्रिय विषय वस्तु है और वह अपनी ओर से दूसरों को कुछ दे सकता है। लोकप्रिय धर्माचरण भी अपने में कलीसिया की एक मूल्यवान निधि है, जो ईश प्रजा को अपनी यात्रा में शिक्षित करती है। श्रोताओं, प्रशिक्षण के कार्य प्रणाली जिसके द्वारा सिनोडालिटी के नए उत्साह को लाभ प्राप्त होता है, हमें चाहिए कि हम धर्म शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही दीक्षांत की यात्रा में धर्म शिक्षा सदैव प्रेरिताई की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कराती है। प्रेरिताई हेतु शिष्यों के समुदाय को इस बात का ज्ञान है कि करुणा की निशानी और हर व्यक्ति के जीवन के अनुभवों के आधार पर धर्म शिक्षा का अनुपालन कैसे किया जा सकता है। कलीसिया की धर्म शिक्षा का सार को खोए बिना इसे अस्तित्वगत परिधि तक कैसे ले जाया जाता है। इस भांति यह हमारे समय के नर और नारियों के लिए एक वार्ता का प्रयोगशाला बनता और उन्हें जीवन के अर्थ को खोजने में प्रकाशित करता है। बहुत से कलीसियाओं में धर्म शिक्षा सहचर्य और प्रशिक्षण के लिए मूलभूत साधन है, वहीं दूसरों में उनकी सेवा की हमें प्रशंसा और समुदायों के द्वारा सहयोग किया जाना चाहिए। हमें चाहिए कि हम प्रतिनिधित्व के तर्क से अपने को दूर रखें, जो सिनोडालिटी के विरुद्ध है। इंसानों के प्रवासन की घटनाओं के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि धर्म शिक्षा शुरुआती कलीसियाओं और उसके उद्देश्यों के संबंध में आपसी जान पहचान के रिश्तों को गहरा बनाने में बढ़ावा दे। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत धर्माधीक्षकों की 16वीं धर्म सभा, एक सिनोडल कलीसिया, एकता, सहभागिता और प्रेरिताई के अंतिम दस्तावेज पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

पर तीसरी विशेषज्ञों की मीटिंग में हिस्सा लेने वालों को भेजा गया था। इसमें संत पापा ने तेजी से हो रहे तकनीकी के विकास से पैदा हुई जरूरी नैतिक चुनौतियों पर ध्यान दिया। अपने विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास का जिक्र करते हुए संत पापा ने कहा कि आज का समाज, जिसे उन्होंने उपनिवेशवाद का नया रूप बताया, उसका सामना कर रहा है जो व्यक्तिगत जिंदगी को ऐसे डेटा में बदलना चाहता है जिसका इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि तकनीकी के लगातार विकास ने एकांत और सुरक्षा संरक्षण में बदलाव और उन्हें मजबूत करना एक बहुत जरूरी काम बना दिया है। संत पापा लियो ने इस बात पर जोर दिया कि हर इंसान की अंदरूनी गरिमा होती है, जिसे सिर्फ जानकारी या कमर्शियल वैल्यू तक कम नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने संदेश में कहा, ईश्वर की छवि और समानता में बनाया गया हर इंसान एक ऐसा अनोखा और अनमोल इंसान है जिसकी कीमत कम नहीं की जा सकती। इसी वजह से उन्होंने आगे कहा, समाज को ऐसे शोषण और कमर्शियलाइजेशन से बचना चाहिए जो लोगों को सिर्फ डेटा का कलेक्शन समझते हैं। मीटिंग में भाग लेने वालों का हौसला बढ़ाते हुए संत पापा लियो ने उम्मीद जताई कि ताइपेई का बदला हुआ डिक्लरेशन आम भलाई के लिए ज्ञान को जिम्मेदारी से साझा करने को बढ़ावा देते हुए मानव गरिमा को बनाए रखेगा। उन्होंने कहा, मानव का सम्मान और साझा किए गए ज्ञान को आगे बढ़ाना ही नैतिक मेडिकल रिसर्च और हेल्थ केयर पॉलिसी की नींव बना रहना चाहिए। और संत पापा लियो 14वें ने मारिया मोंतेसेरात अल्वारादो को, जो अभी EWTN न्यूज यानी इटर्नल वर्ल्ड टेलीविजन नेटवर्क न्यूज की अध्यक्ष और प्रधान परिचालन अधिकारी हैं, को 1 नवंबर 2026 से संचार विभाग का प्रीफेक्ट नियुक्त किया है। मेक्सिको सिटी में जन्मी अल्वारादो ने फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से अकादमिक डिग्री हासिल की। 2009 से 2023 तक उन्होंने बेकेट फंड फॉर रिलीजियस लिबर्टी की अगुवाई की, जहां उन्होंने धार्मिक आजादी की रक्षा और मानव गरिमा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। 2023 से वे EWTN न्यूज की अध्यक्ष और प्रधान परिचालन अधिकारी के तौर पर काम कर रही हैं, जो इटर्नल वर्ल्ड टेलीविजन नेटवर्क का न्यूज डिवीजन है और टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया पर 7 भाषाओं में सामग्री बनाने वाले इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखती हैं। अल्वारादो की नियुक्ति के साथ संत पापा लियो 14वें संत पापा फ्रांसिस द्वारा शुरू किए गए रोमन कूरिया में सुधार और नवीनीकरण के रास्ते को जारी रखेंगे, जिसमें आम लोगों, पुरुषों और महिलाओं को विश्वव्यापी कलीसिया की सेवा में नेतृत्व और जिम्मेदारी के पद दिए गए हैं। अल्वारादो पहली लोकधर्मी महिला हैं जिन्हें परम धर्म पीठ के विभाग का प्रीफेक्ट नियुक्त किया गया है। उधर स्विट्जरलैंड के धर्माध्यक्षों को उनकी आम सभा के मौके पर भेजे गए एक वीडियो संदेश में कार्डिनल माइकल चेरनी ने 25 मई को प्रकाशित हुए संत पापा लियो 14वें के विश्व पत्र के महत्व पर बात की और बताया कि यह दस्तावेज हमें अपनी संरचना, काम करने के तरीकों और सुसमाचार प्रचार के प्रति हमारे दृष्टिकोण को जांचने की चुनौती देता है। अभिन्न मानव विकास को बढ़ावा देने वाले विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल माइकल चेरनी के खुद आइंसिडेन आबे में जाने की उम्मीद थी, लेकिन वाटिकन के कुछ जरूरी काम की वजह से वे यात्रा नहीं कर पाए। स्विस धर्माध्यक्षों को दिए गए अपने संदेश में 25 मई को प्रकाशित संत पापा लियो 14वें के विश्व पत्र के महत्व पर केंद्रित था। कार्डिनल चेरनी ने हाल ही में संत पापा द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े काम को कोऑर्डिनेट करने के लिए बनाए गए पोंटिफिकल कमीशन पर भी बात की, जिसे विभाग की अगुवाई में सौंपा गया था। उन्होंने कहा, शुरू से ही एक जरूरी सवाल हमारे सामने आता है, यह नया कमीशन स्थानीय कलीसियाओं के साथ बातचीत कैसे कर सकता है, उनका साथ कैसे दे सकता है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण आज पैदा हो रही चुनौतियों और समझदारी से निपटने में उनका समर्थन कैसे कर सकता है। कार्डिनल चेरनी ने आगे कहा, संत पापा फ्रांसिस ने मुझे जो सबसे बड़ी सीख दी थी वह यह थी, असलियत से मत डरो। उन्होंने कहा कि समय के साथ उन्हें समझ में आया कि हम सभी को कितनी जोर से

भाया जा सकता है। मैं और कलीसिया में कई दूसरे लोग भी खुद को असलियत से बचाने के लिए या कभी कभी अलग अलग तरीकों से खुद को उससे दूर रखने के लिए। उन्होंने कहा कि मैनिफिका हुमानितास का प्रकाशन असलियत से जुड़ने की कोशिश करता है, कलीसिया के सामाजिक सिद्धांत के महान नींव और सिद्धांतों को जोरदार तरीके से दोहराकर। यह विश्व पत्र हमें कई चुनौतियों को पहचानने, समझने, उसका मतलब निकालने और अंत में उसका सामना करने में मदद करता है, न केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी चुनौतियों को जो हमारी इंसानियत के लिए खतरा है, पूरे मानव विकास में गंभीर रुकावटें खड़ी करती हैं। उधर होर्मुज में एक और तनाव, कुवैत को ड्रोन से निशाना बनाया गया। अमेरिका ने कहा कि उसने सप्ताहांत में ईरानी मिलिट्री साइट्स पर हमला किया, जबकि तेहरान ने दावा किया कि उसने जवाब में एक अमेरिकी बेस को निशाना बनाया, जो होर्मुज स्ट्रेट के आसपास एक हफ्ते में तीसरी बार हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने ईरानी एक्शन के बाद सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पानी के ऊपर एक अमेरिकी ड्रोन को गिराना भी शामिल था। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत हम धर्माधर्शकों की 16वीं धर्म सभा एक सिनोडल कलिसिया एकता, सहभागिता और प्रेरिताई के अंतिम दस्तावेज पर अपनी चर्चा कर रहे हैं। सिनोडल कलिसिया के अंतिम दस्तावेज के भाग 5, जिसका शीर्षक है अतः मैं तुम्हें भेजता हूँ, की शुरुआत करते हुए हमने अपने विगत प्रसारण के अंतिम भाग में कहा कि सिनोडालिटी का प्रशिक्षण और कलिसिया की सिनोडल शैली लोगों में इस बात की सचेतना लाती है कि बपतिस्मा में मिले उपहारों को हमें सबों के लिए उपयोग में लाने की जरूरत है। वे अपने में गुप्त या छुपे हुए नहीं रह सकते हैं। श्रोताओं, प्रेरितिक शिष्यों का प्रशिक्षण ख्रिस्तीय बपतिस्मा संस्कार में शुरू होता है और उनमें बना रहता है। हर व्यक्ति के विश्वास की यात्रा में हम बहुत से लोगों, समूहों और छोटे समुदायों से मिलन को पाते हैं, जो उन्हें ईश्वर के संग संबंध पोषित करने में और कलिसियाई एकता से उनका परिचय कराता है। माता पिता और परिवार के सदस्य गण, दादा दादी, धर्म शिक्षक और प्रचारक, धर्म विधि के अगुवे और वे जो करुणा के कार्यों में मदद करते हैं, उपयाजक, पुरोहित गण और स्वयं धर्माध्यक्ष। कभी कभी बपतिस्मा की धर्म विधि के एक बार समाप्त हो जाने पर समुदाय के संग संबंध कमजोर होने लगता है और प्रशिक्षण की अवहेलना होती है। यद्यपि ऐसा कुछ नहीं है, हम एक बार हमेशा के लिए यीशु ख्रिस्त के शिष्य नहीं बनते हैं। यह हमसे निरंतर परिवर्तन की मांग करता है, प्रेम में बढ़ने की, जब तक हम मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त ना कर लें और पवित्र आत्मा के उपहारों के लिए खुला होते हुए, जिससे हम आनंद और जीवंत विश्वास का साक्ष्य दे सकें। यही कारण है कि हमें इस बात की पुनः खोज करने की आवश्यकता है कि रविवार ये ख्रिस्तियाग कैसे हमारा निर्माण करता है, हमारे निर्माण का विस्तार यीशु ख्रिस्त के अनुरूप हो, यह अमूर्त मानसिक प्रक्रिया के रूप में ना हो बल्कि उनमें हमारा एक होना हो। बहुत से विश्वासियों के लिए केवल रविवार ये यूखरिस्त कलिसिया के संग जुड़े रहने का एक माध्यम बनती है। वे इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि उसे विशेष रूप में अर्पित किया जाता हो, खास रूप से प्रवचन पर ध्यान देते हुए और हर एक की सक्रिय सहभागिता के द्वारा, जो उसे सिनोडालिटी का स्वरूप बनाता है। मिस्सा बलिदान में हम सिनोडालिटी का अनुभव करते हैं, जो कलिसिया के द्वारा हमारे जीवन में कृपा स्वरूप ऊपर से आती है, जिसे हम ग्रहण करते हैं। यहाँ हमारे लिए सिनोडालिटी हमारे प्रयासों के फलस्वरूप होता है। हम किसी एक के नेतृत्व हेतु और कुछ एक लोगों की प्रेरिताई के लिए कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सभी कोई दो आयामी मेज, वचन और रोटी के भागीदार होते हैं। एकता, प्रेरिताई और सहभागिता का उपहार, जो सिनोडालिटी के 3 मुख्य बिंदु हैं, जिसे हम हर यूखरिस्त में अनुभव और नवीन होता पाते हैं। श्रोताओं, एक निवेदन जो सिनोडल प्रक्रिया के दौरान मजबूत रूप में सभी संदर्भों से उभर कर निकला, जो यह था कि ख्रिस्तीय समुदाय के द्वारा दिए जाने वाला प्रशिक्षण अपने में समग्र, निरंतर और साझा करने वाला हो। ऐसा प्रशिक्षण सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित ना हो, बल्कि यह खुलेपन और मिलन, साझा और सहयोग, चिंतन और सामान्य रूप में आत्म परीक्षण की योग्यता को भी प्रोत्साहित करता हो। इसके परिणाम स्वरूप प्रशिक्षण को चाहिए कि वह मानव जीवन के सभी आयामों, बौद्धिक, भावनात्मक, संबंधपूर्ण और आध्यात्मिकता को समाहित करे और ठोस अनुभवों को भी अपने में संलग्न करे जो उचित रूप में साथ साथ चलते हैं। पूरे धर्म सभा के सिनोडल प्रक्रिया में इस बात पर भी जोर दिया गया था कि हमें एक सामुदायिक और साझा प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिसमें नर और नारियां, लोक धर्मी समर्पित जीवन के लोग, अभिषिक्त, प्रेरित और पुरोहिताई के उम्मीदवार शामिल हों, जिससे वे पारस्परिक रूप में ज्ञान और सम्मान में बढ़ते हुए आपसी सहयोग कर सकें। यह हमारे लिए उपयुक्त और सक्षम प्रशिक्षण दाताओं की मांग करती है जो अपने जीवन के द्वारा उन बातों का साक्ष्य प्रस्तुत करने के योग्य होते हैं जिनकी शिक्षा वे अपने वचनों के द्वारा देते हैं। केवल ऐसा करने के द्वारा हम प्रशिक्षण को सही अर्थ में फलहित होने और उसे परिवर्तित करने वाला पाएंगे। हमें अनुशासन युक्त शिक्षा के उस योगदान, वयस्कों में सीखने के स्वरूप, शिक्षण के तौर तरीके और व्यक्तिगत तथा समुदायों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं जो हमारे लिए बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। अतः हमें चाहिए कि हम प्रशिक्षु और प्रशिक्षण पर व्यय करें। श्रोताओं, कलिसा के पास प्रेरितिक शिष्यों के प्रशिक्षण के लिए पहले से ही बहुत से स्थल और संसाधन हैं। परिवारें, छोटे समुदाय, पल्लियां, कलिसियाई संगठने, लघु गुरुकुल और धर्म संघ के समुदाय, शैक्षणिक संस्थान और इसके साथ ही हाशिए पर रहने वालों के लिए कार्य और सेवा करने के स्थल, इसके अलावे प्रेरिताई और स्वयं सेवी पहले। इनमें से हर स्थल में समुदाय अपने साक्ष्य के माध्यम शिष्यों के प्रशिक्षण और उनका साथ देने में अपनी योग्यता को प्रकट करती है। यह मिलन बहुत बार विभिन्न पीढ़ियों के लोगों को एक साथ लाती है, अति युवाओं से लेकर अति बुजुर्गों को कलिसिया में। कलिसिया में किसी का यूं ही प्रशिक्षण नहीं होता है, हर कोई अपने में एक सक्रिय विषय वस्तु है और वह अपनी ओर से दूसरों को कुछ दे सकता है। लोकप्रिय धर्माचरण भी अपने में कलिसिया की एक मूल्यवान निधि है जो ईश प्रजा को अपनी यात्रा में शिक्षित करती है। श्रोताओं, प्रशिक्षण के कार्य प्रणाली जिसके द्वारा सिनोडालिटी के नए उत्साह को लाभ प्राप्त होता है, हमें चाहिए कि हम धर्म शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही दीक्षांत की यात्रा में धर्म शिक्षा सदैव प्रेरिताई की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कराती है। प्रेरिताई हेतु शिष्यों के समुदाय को इस बात का ज्ञान है कि करुणा की निशानी और हर व्यक्ति के जीवन के अनुभवों के आधार पर धर्म शिक्षा का अनुपालन कैसे किया जा सकता है। कलिसिया की धर्म शिक्षा का सार को खोए बिना इसे अस्तित्वगत परिधि तक कैसे ले जाया जाता है। इस भांति यह हमारे समय के नर और नारियों के लिए एक वार्ता का प्रयोगशाला बनता और उन्हें जीवन के अर्थ को खोजने में प्रकाशित करता है। बहुत से कलिसियाओं में धर्म शिक्षा सहचर्य और प्रशिक्षण के लिए मूलभूत साधन है, वहीं दूसरों में उनकी सेवा की हमें प्रशंसा और समुदायों के द्वारा सहयोग किया जाना चाहिए। हमें चाहिए कि हम प्रतिनिधित्व के तर्क से अपने को दूर रखें जो सिनोडालिटी के विरुद्ध है। इंसानों के प्रवासन की घटनाओं के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि धर्म शिक्षा शुरुआती कलिसियाओं और उसके उद्देश्यों के संबंध में आपसी जान पहचान के रिश्तों को गहरा बनाने में बढ़ावा दे। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारी कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत धर्माधीक्षकों की 16वीं धर्म सभा, एक सिनोडल कलिसिया, एकता, सहभागिता और प्रेरिताई के अंतिम दस्तावेज पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने विश्व स्वास्थ्य संघ के ताइपेई घोषणा में बदलाव करने वाले विशेषज्ञों से स्वास्थ्य डेटाबेस और बायोबैंक के लिए नैतिक सुरक्षा को मजबूत करने की अपील की और तेजी से बदलती तकनीकी के युग में मानव गरिमा की सुरक्षा पर जोर दिया। संत पापा लियो 14वें ने लोगों को गलत डेटा तक सीमित करने के खिलाफ चेतावनी दी और ऐसी नीतियां बनाने की अपील की जो प्राइवेसी और आम भलाई दोनों को बढ़ावा दे। 1 जून का यह संदेश विश्व स्वास्थ्य संघ के ताइपेई घोषणा में बदलाव पर तीसरी विशेषज्ञों की मीटिंग में हिस्सा लेने वालों को भेजा गया था। इसमें संत पापा ने तेजी से हो रहे तकनीकी के विकास से पैदा हुई जरूरी नैतिक चुनौतियों पर ध्यान दिया। अपने विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास का जिक्र करते हुए संत पापा ने कहा कि आज का समाज, जिसे उन्होंने उपनिवेशवाद का नया रूप बताया, उसका सामना कर रहा है जो व्यक्तिगत जिंदगी को ऐसे डेटा में बदलना चाहता है जिसका इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि तकनीकी के लगातार विकास ने एकांत और सुरक्षा संरक्षण में बदलाव और उन्हें मजबूत करना एक बहुत जरूरी काम बना दिया है। संत पापा लियो ने इस बात पर जोर दिया कि हर इंसान की अंदरूनी गरिमा होती है, जिसे सिर्फ जानकारी या कमर्शियल वैल्यू तक कम नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने संदेश में कहा, ईश्वर की छवि और समानता में बनाया गया हर इंसान एक ऐसा अनोखा और अनमोल इंसान है जिसकी कीमत कम नहीं की जा सकती। इसी वजह से उन्होंने आगे कहा, समाज को ऐसे शोषण और कमर्शियलाइजेशन से बचना चाहिए जो लोगों को सिर्फ डेटा का कलेक्शन समझते हैं। मीटिंग में भाग लेने वालों का हौसला बढ़ाते हुए संत पापा लियो ने उम्मीद जताई कि ताइपेई का बदला हुआ डिक्लेरेशन आम भलाई के लिए ज्ञान को जिम्मेदारी से साझा करने को बढ़ावा देते हुए मानव गरिमा को बनाए रखेगा। उन्होंने कहा, मानव का सम्मान और साझा किए गए ज्ञान को आगे बढ़ाना ही नैतिक मेडिकल रिसर्च और हेल्थ केयर पॉलिसी की नींव बना रहना चाहिए। और संत पापा लियो 14वें ने मारिया मोंटेसेरात अल्वारादो को, जो अभी EWTN न्यूज यानी इटर्नल वर्ल्ड टेलीविजन नेटवर्क न्यूज की अध्यक्ष और प्रधान परिचालन अधिकारी हैं, को 1 नवंबर 2026 से संचार विभाग का प्रीफेक्ट नियुक्त किया है। मेक्सिको सिटी में जन्मी अल्वारादो ने फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से अकादमिक डिग्री हासिल की। 2009 से 2023 तक उन्होंने बेकेट फंड फॉर रिलीजियस लिबर्टी की अगुवाई की, जहां उन्होंने धार्मिक आज़ादी की रक्षा और मानव गरिमा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। 2023 से वे EWTN न्यूज की अध्यक्ष और प्रधान परिचालन अधिकारी के तौर पर काम कर रही हैं, जो इटर्नल वर्ल्ड टेलीविजन नेटवर्क का न्यूज डिवीजन है और टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया पर 7 भाषाओं में सामग्री बनाने वाले इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखती हैं। अल्वारादो की नियुक्ति के साथ संत पापा लियो 14वें संत पापा फ्रांसिस द्वारा शुरू किए गए रोमन कूरिया में सुधार और नवीनीकरण के रास्ते को जारी रखेंगे, जिसमें आम लोगों, पुरुषों और महिलाओं को विश्वव्यापी कलीसिया की सेवा में नेतृत्व और जिम्मेदारी के पद दिए गए हैं। अल्वारादो पहली लोकधर्मी महिला हैं जिन्हें परम धर्मपीठ के विभाग का प्रीफेक्ट नियुक्त किया गया है। उधर स्विट्जरलैंड के धर्माध्यक्षों को उनकी आम सभा के मौके पर भेजे गए एक वीडियो संदेश में कार्डिनल माइकल चेरनी ने 25 मई को प्रकाशित हुए संत पापा लियो 14वें के विश्व पत्र के महत्व पर बात की और बताया कि यह दस्तावेज हमें अपनी संरचना, काम करने के तरीकों और सुसमाचार प्रचार के प्रति हमारे दृष्टिकोण को जांचने की चुनौती देता है। अभिन्न मानव विकास को बढ़ावा देने वाले विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल माइकल चेरनी के खुद आइंसिडेन आबे में जाने की उम्मीद थी, लेकिन वाटिकन के कुछ जरूरी काम की वजह से वे यात्रा नहीं कर पाए। स्विस धर्माध्यक्षों को दिए गए अपने संदेश में 25 मई को प्रकाशित संत पापा लियो 14वें के विश्व पत्र के महत्व पर केंद्रित था।
कार्डिनल चेरनी ने हाल ही में संत पापा द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े काम को कोऑर्डिनेट करने के लिए बनाए गए पोंटिफिकल कमीशन पर भी बात की, जिसे विभाग की अगुवाई में सौंपा गया था। उन्होंने कहा, शुरू से ही एक जरूरी सवाल हमारे सामने आता है, यह नया कमीशन स्थानीय कलीसियाओं के साथ बातचीत कैसे कर सकता है, उनका साथ कैसे दे सकता है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण आज पैदा हो रही चुनौतियों और समझदारी से निपटने में उनका समर्थन कैसे कर सकता है। कार्डिनल चेरनी ने आगे कहा, संत पापा फ्रांसिस ने मुझे जो सबसे बड़ी सीख दी थी वह यह थी, असलियत से मत डरो। उन्होंने कहा कि समय के साथ उन्हें समझ में आया कि हम सभी को कितनी जोर से लुभाया जा सकता है। मैं और कलीसिया में कई दूसरे लोग भी खुद को असलियत से बचाने के लिए या कभी कभी अलग अलग तरीकों से खुद को उससे दूर रखने के लिए। उन्होंने कहा कि मैनिफिका हुमानितास का प्रकाशन असलियत से जुड़ने की कोशिश करता है, कलीसिया के सामाजिक सिद्धांत के महान नींव और सिद्धांतों को जोरदार तरीके से दोहराकर यह विश्व पत्र हमें कई चुनौतियों को पहचानने, समझने, उसका मतलब निकालने और अंत में उसका सामना करने में मदद करता है, न केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी चुनौतियों को जो हमारी इंसानियत के लिए खतरा है, पूरे मानव विकास में गंभीर रुकावटें खड़ी करती हैं। उधर होर्मुज में एक और तनाव, कुवैत को ड्रोन से निशाना बनाया गया। अमेरिका ने कहा कि उसने सप्ताहांत में ईरानी मिलिट्री साइट्स पर हमला किया, जबकि तेहरान ने दावा किया कि उसने जवाब में एक अमेरिकी बेस को निशाना बनाया, जो होर्मुज स्ट्रेट के आसपास एक हफ्ते में तीसरी बार हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने ईरानी एक्शन के बाद सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पानी के ऊपर एक अमेरिकी ड्रोन को गिराना भी शामिल था। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का पहला भेद, प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठते हैं,
2: मतलब हम विश्वास में दृढ़ रहें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया,

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: महिमा का दूसरा भेद, प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित होते हैं,
2: मतलब हम ईश्वर को दिन दिन अधिक प्यार करें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का तीसरा भेद पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है,
2: मतलब हम अपने पड़ोसियों को प्यार कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का चौथा भेद, माता मरियम स्वर्ग में उठा रखी जाती है,
2: मतलब हम अपने कर्तव्य काम ठीक से कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का पांचवा भेद, माता मरियम स्वर्ग में रानी का मुकुट पाती है।
2: मतलब हमारे बिछुड़े भाई बहने असल धर्म में फिर लौट सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर, कृपा

0: प्रार्थना द्वारा
1: हमको इस लोक के
0: दुख से मुक्त होकर
1: अनंत सुख भोगने दे।
0: क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा,
1: आमेन।
0: पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारी आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो चौदवे ने अपने बुधवारी आम दर्शन समारोह के अवसर पर वैटिकन द्वितीय के धर्म सिद्धांत साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम पर चिंतन करते हुए धार्मिक अनुष्ठान, चिन्ह और प्रतीक पर प्रकाश डाला। संत पापा लियो ने संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguendo le catechesi sulla costituzione conciliare sacrosanctum concilium.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। अपने बुधवारीय धर्म शिक्षा में जिस भांति हम द्वितीय वैटिकन महासभा के धर्म सिद्धांत साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम पर चिंतन कर रहे हैं, हम पवित्र धर्म विधि के मूल बातों जैसे कि धार्मिक अनुष्ठान, चिन्ह और प्रतीक पर चिंतन करेंगे। संत पापा ने कहा कि वैटिकन द्वितीय महासभा धर्म विधि के मूल्यवान तथ्यों पर कार्य करते हुए हमें इस बात की सच्चाई को पुनः खोज करने में मदद करती है जो प्राचीन कलिसे की चेतना और धर्माचार्यों की शिक्षा में पहले से व्याप्त था। ख्रिस्तीय धर्म विधि का अनुष्ठान संस्कारीय रहस्यों का बाह्य आवरण, समारोहों का मनमाना संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि कलिसे का मनन चिंतन है जिसके माध्यम दिव्य उपहार हमारे लिए पहुँचते हैं। इस कारण विशेष रूप से धर्म सभा हमें मिस्टेरियम फीदेई, विश्वास के रहस्य को समझने का आह्वान करती है जो हमारे लिए धर्म विधि के धार्मिक अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं में पूरी होती है। संत पापा ने कहा, धार्मिक अनुष्ठान हमारे लिए धर्म विधि को आकार प्रदान करती है जिसके द्वारा वे हमारे जीवन में आध्यात्मिक संवेदना उत्पन्न करते हैं जो हमारे लिए यीशु ख्रीस्त के द्वारा ईश्वर की उपस्थिति का रसास्वादन करने में मदद करते हैं। स्वाभाविक रूप में यह हमारे लिए तब होता है यदि हम धर्म विधि के संबंध में अपरिचित या मूक दर्शक बने नहीं रहते, लेकिन उनमें पूरी तरह से शरीर, मन और हृदय से अपने को शामिल करते हैं जैसे कि हम उसे ईश्वर की आज्ञा में पाते हैं। इस भांति पवित्र धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा हम ईश्वर के वचनों को सुनने, कृतज्ञता के भाव और आराधना में, भ्रातृत्व में आदान प्रदान और कलिसे की एकता में बने रहने हेतु अपने को तैयार करते हैं। हम इस बात को पाते हैं कि हम विभिन्न चेहरों के एक समूह हैं जो एक ही विश्वास में पिरोए गए हैं। संत पापा ने कहा,
2: Il rito ci coinvolge in una sequenza di gesti e di preghiere ben definita.
1: धर्म विधि की रीति हमें बेहतर रूप में परिभाषित अभिव्यक्तियों और प्रार्थना की कड़ी में जोड़ती है जो कभी कभी हमें व्यक्तिगत रूप में सहज लगने के बदले अटपटा लगता है। इसका तर्क यद्यपि कार्य की कठोर रूप रेखा में स्वतंत्रता का अवरोध करना नहीं है, इसके विपरीत इसके भव्य सुर की सरलता में धार्मिक अनुष्ठान हमारे लिए कठोर क्रियाकलापों को परिभाषित करते और हमें उन बातों की ओर अग्रसर करते हैं जो जरूरी है। इस भांति हम कार्य के एक दूसरे आयाम की खोज करते हैं जो उत्पादक के हिसाब तथा समय और स्थल के अनुभव से नहीं चलता है। धार्मिक अनुष्ठान में हम मुफ्त में मिलने वाले तर्क का अनुभव करते हैं। हम एक ठहराव को पाते जो हमारे हृदयों का निर्माण फिर से करता है। हम इस बात का अनुभव करते हैं कि हम दिव्य कृपा से पोषित किए जाते हैं। हम एक ताल में जीना सीखते हैं जिसमें पवित्र आत्मा निवास करते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि धार्मिक अनुष्ठान का व्याकरण हमारे लिए चिन्हों और प्रतीकों के ताने बाने से बुना गया है, जो धर्म विधि का भाग है। इसमें जैसे कि धर्म सभा हमें कहती है, व्यक्ति का पवित्रीकरण इंद्रियों द्वारा अनुभव किए जाने वाले संकेतों के अनुरूप होता है और इन संकेतों का प्रभाव को हम मेल खाने वाले चिन्हों में पाते हैं। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा इन चिन्हों के महत्व के बारे में याद दिलाते हुए कहती है कि उनका अर्थ सृष्टि में उनकी रचना और मानव की संस्कृति पर आधारित है, जो विशेषकर प्राचीन विधान की घटनाओं से परिभाषित है और जो पूर्ण रूपेण यीशु ख्रीस्त और उनके कार्यों में प्रकट होता है। पानी की निशानी सृष्टि के शुरू से लेकर जल प्रलय तक, लाल समुद्र से पार होकर यर्दन तक और फिर यीशु ख्रीस्त की बगल से प्रवाहित होने वाले जल तक, जो हमारे लिए यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान में संस्कारीय रूप में डूबे जाने की निशानी है। चिन्ह और प्रतीक हमारे लिए दो शब्द हैं जिनका उपयोग सदैव एक दूसरे के लिए होता है। वास्तव में एक चिन्ह हमारे लिए प्रतीक है जब वह अपने में न केवल एक विचार बल्कि संपूर्ण प्रणाली के अर्थ और मूल्यों की ओर हमारा ध्यान इंगित कराता है। इस भांति उदाहरण के लिए, जब हम सभों पर पवित्र जल छिड़का जाता है तो यह हमारे बपतिस्मा में प्राप्त उपहार और यीशु ख्रीस्त में हमारे समर्पित जीवन की सचेतना को जागृत करता है। दूसरे निशानियों को हम मुख्यतः व्यवहारिक रूप से प्राकृतिक पाते हैं, जो सबसे पहले और सबसे जरूरी काम होते हैं। कुछ साधारण और सामान्य निशानी जैसे कि घुटनी टेकना और शांति अभिवादन देना या अधिक मांग करने वाले जैसे हर संस्कार के कार्यों को हम पाते हैं। इन सारी चीजों से बढ़कर निशानियों को हम एक अद्वितीय प्रदर्शनकारी और परिवर्तनकारी आयाम स्वरूप पाते हैं, जिनका संबंध भौतिक चीजों से है, जिनके द्वारा वे बने हैं और जिनका उनके संग संपर्क होता है या जुड़े होने के भाव उत्पन्न करते हैं। यह उनके मन और दिल का स्पर्श करता और उन्हें कलीसिया के सच्चे संबंधों की ओर उन्मुख करता है। संत पापा लियो ने कहा,
2: Nella lettera apostolica Desiderio Desideravi, Papa Francesco, facendo proprio un'affermazione di Romano Guardini, individuava il primo compito del lavoro di formazione liturgica.
1: प्रेरितिक प्रबोधन Desiderio Desideravi में संत पापा फ्रांसिस रोमानो गुआर्दिनी की बातों को उद्धृत करते हैं। धर्म विधि का प्रथम प्रशिक्षण कार्य, मानव को चाहिए कि वह पुनः एक बार प्रतीकों के योग्य बने। हमें अपने को धर्म विधि के अनुष्ठानों से शिक्षित करने की जरूरत है। हमें कोमलता में अपने समारोहों की सुंदरता की देख रेख करने की जरूरत है, बिना मनमानी के। हमें एक वास्तविक रहस्यवाद हेतु समर्पित होने की आवश्यकता है। एक सजीव और धार्मिक धर्म विधि जिसका अनुष्ठान सही रहस्यमय धर्म शिक्षा के माध्यम होता है, यह हर एक में ईश्वर से मिलन हेतु एक सुंदर स्रोत बनता है, जिसे हम देह धारण के तर्क में पाते हैं। यह सिर्फ तब हो सकता है जब व्यक्ति अपने को हृदय, आत्मा और शरीर से शामिल करता है। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने बुधवार सुबह वाटिकन के संत पापा पॉल षष्ठम सभागार के छोटे कमरे में अमेरिका के कैथोलिक कॉलेजों और विश्वविद्यालय के संघ के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की, जो 2026 रोम सेमिनार के लिए रोम आए हुए हैं। संत पापा ने कहा, जब तक कैथोलिक शिक्षा छात्रों में सच्चाई के लिए सच्चा जुनून नहीं जगाती और सिर्फ दिमागी सच्चाई ही नहीं बल्कि वह सच्चाई जो खुद यीशु ख्रीस्त हैं, हम शायद ही उम्मीद कर सकते हैं कि लोग सच्चाई को पहचानने और उसके अनुसार अपना जीवन बदलने के लिए जरूरी कोशिश करने को तैयार होंगे। संत पापा ने इस बात पर जोर दिया कि कैथोलिक संस्थानों को एक ऐसा जीवंत माहौल कहा जाता है जिसमें क्रिश्चिय सोच हर विषय और हर बातचीत में शामिल हो। विश्वविद्यालय के अध्यक्षों और रेक्टरों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा, क्रिस्त के सच्चे शिष्य के तौर पर आपकी असलियत निश्चित रूप से आपको जीवित सुसमाचार को इस तरह से फैलाने में मदद करेगी कि जिन्हें आपको सौंपा गया है वे सच में प्रभु से मिल सकें और कैथोलिक धर्म में उस एकजुट करने वाली सोच को खोज सकें जो सिर्फ सच्चाई ही दे सकती है। संत पापा ने 25 मई को प्रकाशित हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में इंसान की सुरक्षा पर लिखे गए विश्व पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास की रोशनी में आज की दुनिया में कैथोलिक शिक्षा के अहम महत्व के बारे में प्रोफेसरों से कुछ बातें की। सबसे पहले उन्होंने देखा कि शिक्षा की दुनिया अभी ज्ञान के बढ़ते बंटवारे का सामना कर रही है। हालांकि ऐसे लोगों को ढूंढना आसान है जो पढ़ाई के किसी खास क्षेत्र में विशेषज्ञ हों, लेकिन इनमें से कई लोग अपनी जिंदगी में दिशा ढूंढने के लिए संघर्ष करते हैं। उन्होंने कहा, इस मामले में कैथोलिक शिक्षा की खास तौर पर अहम भूमिका है। संत पापा ने प्रोफेसरों को प्रोत्साहन दिया कि जब युवा लड़के लड़कियां आपके कॉलेज और विश्वविद्यालय में कोई खास डिग्री पढ़ने आते हैं तो वे अक्सर भविष्य में नौकरी की उम्मीदों से प्रेरित होकर आते हैं। प्रोफेसर ज्ञान की उस इच्छा का मार्गदर्शन करने के अपने नेक काम में लगे रहें ताकि छात्र सत्य को खोजना और उससे प्यार करना, जीवन के मतलब पर सोचना और हर इंसान की गरिमा को पहचानना सीख सकें। और संत पापा लियो 14वें ने संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में बुधवारी आम दर्शन समारोह के दौरान तीर्थयात्रियों का अभिवादन कर याद दिलाया कि इस सप्ताह गुरुवार को कलीसिया मसीह के पवित्र शरीर और रक्त का त्यौहार कॉर्पस क्रिस्टी मना रही है। संत पापा ने विश्वासियों को इस परंपरा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, कई शहरों और देशों की सड़कों पर पवित्र संस्कार के साथ होने वाले जुलूसों को लोकप्रिय यूखरिस्त भक्ति की झलक मिलती है। इस बारे में मैं आपको विश्वास के लिए सार्वजनिक गवाही के इस खूबसूरत प्रदर्शन को जिंदा रखने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। यूखरिस्त में हम येसु के बारे में सोचते हैं जो हम में से हर एक के लिए तोड़ी और दी गई रोटी है। विश्वासियों को अपने अभिवादन में संत पापा ने मध्य पूर्व में सेवा कर रहे पुरोहितों और धर्म संघियों के प्रति अपनी खास करीबी शब्द कहे। मैं अपनी प्रार्थना और आशीर्वाद के साथ आपकी सेवा के कार्यों और आपके अपने देशों की उम्मीदों के साथ हूँ। संत पापा ने येसु के पवित्र हृदय की पुत्रियों, मोंटफोर्ट परिवार के सदस्यों और सेनाकल की माता मरियम की धर्म बहनों को भी बधाई दी और उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे उन सभी के लिए उम्मीद की निशानी बने जो ईश्वर और उनकी सच्चाई और उनकी शांति के प्यासे हैं। और संत पापा लियो 14वें ने दुनिया भर के कैथोलिकों से इस जून महीने में खेल के महत्व के लिए प्रार्थना करने में उनके साथ शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने मंगलवार को महीने का संत पापा के साथ प्रार्थना करे वीडियो जारी किया, जिसे संत पापा के विश्वव्यापी प्रार्थना नेटवर्क ने तैयार किया है। अपनी प्रार्थना में संत पापा ने खेल की दुनिया में बड़े फायदों के साथ साथ अंदरूनी चुनौतियों को भी पहचाना और प्रार्थना की कि खेल कार्यक्रम शांति और भाईचारे को बढ़ावा दे। वे खेल के उपहार के लिए
उन लोगों के लिए जो अपने शारीरिक अभ्यास द्वारा ईश्वर की महिमा करते हैं, खेल मैदान पर पैदा हुई दोस्ती के लिए और एक टीम के रूप में खेल की खुशी के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि संत पापा लियो याद करते हैं, प्रभु हमें सिखाते हैं कि जीवन में जैसे खेल में कोई भी अकेला नहीं बचता। संत पापा जोर देते हैं कि हमें बढ़ने, सम्मान देना सीखने, अपनी सीमाओं को पार करने और अपनी जीत की खुशी साथ मिलकर मनाने के लिए दूसरों की जरूरत होती है। इस तरह संत पापा लियो प्रार्थना करते हैं कि खेल हमेशा भाईचारे का स्कूल बने, खोखली दुश्मनी का नहीं, मिलने जुलने की जगह हो, अलग थलग करने का नहीं, शांति का रास्ता हो, हिंसा का नहीं। और संत पापा लियो 14वें ने 2026 में सृष्टि की देखभाल हेतु विश्व प्रार्थना दिवस के लिए विषय नबी इशायाह के ग्रंथ से अध्याय 2 पद संख्या 4, वे अपनी तलवारों को हल के फाल और अपने भालों को हसिया बना लेंगे को चुना है, जिसे पारंपरिक रूप से 1 सितंबर को मनाया जाता है। समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए बने विभाग के बयान में विभाग ने घोषणा करते हुए कहा है कि इस दिन के लिए संत पापा का संदेश हथियारों की लड़ाई और पर्यावरण के नुकसान के बीच संबंध को दिखाता है। उधर यूक्रेन ने व्लादिमीर पुतिन की स्पीक फोरम की शुरुआत में रूस के शहर संत पीटर्सबर्ग में तेल टर्मिनल समेत कई बुनियादी ढांचों पर हमला किया। मास्को ने खेरसान के एक रिहायशी इलाके पर भी मिसाइलें दागी। कल नीपर और आसपास के इलाकों में रूस के भारी हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारी आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो चौदहवें ने अपने बुधवारी आम दर्शन समारोह के अवसर पर वैटिकन द्वितीय के धर्म सिद्धांत साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम पर चिंतन करते हुए धार्मिक अनुष्ठान, चिन्ह और प्रतीक पर प्रकाश डाला। संत पापा लियो ने संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
2: cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguendo le catechesi sulla costituzione conciliare sacrosanctum concilium.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। अपने बुधवारीय धर्म शिक्षा में जिस भांति हम द्वितीय वैटिकन महासभा के धर्म सिद्धांत साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम पर चिंतन कर रहे हैं, हम पवित्र धर्म विधि के मूल बातों जैसे कि धार्मिक अनुष्ठान, चिन्ह और प्रतीक पर चिंतन करेंगे। संत पापा ने कहा कि वैटिकन द्वितीय महासभा धर्म विधि के मूल्यवान तथ्यों पर कार्य करते हुए हमें इस बात की सच्चाई को पुनः खोज करने में मदद करती है जो प्राचीन कलिस्य की चेतना और धर्माचार्यों की शिक्षा में पहले से व्याप्त था। ख्रिस्तीय धर्म विधि का अनुष्ठान संस्कारीय रहस्यों का बाह्य आवरण, समारोहों का मनमाना संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि कलिस्य का मनन चिंतन है जिसके माध्यम दिव्य उपहार हमारे लिए पहुँचते हैं। इस कारण विशेष रूप से धर्म सभा हमें मिस्टेरियम फीदेई, विश्वास के रहस्य को समझने का आह्वान करती है जो हमारे लिए धर्म विधि के धार्मिक अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं में पूरी होती है। संत पापा ने कहा, धार्मिक अनुष्ठान हमारे लिए धर्म विधि को आकार प्रदान करती है जिसके द्वारा वे हमारे जीवन में आध्यात्मिक संवेदना उत्पन्न करते हैं जो हमारे लिए यीशु ख्रिस्त के द्वारा ईश्वर की उपस्थिति का रसास्वादन करने में मदद करते हैं। स्वाभाविक रूप में यह हमारे लिए तब होता है यदि हम धर्म विधि के संबंध में अपरिचित या मूक दर्शक

0: Senza di gesti e di preghiere ben
1: धर्म
0: definita.
1: विधि की रीति हमें बेहतर रूप में परिभाषित अभिव्यक्तियों और प्रार्थना की कड़ी में जोड़ती है, जो कभी कभी हमें व्यक्तिगत रूप में सहज लगने के बदले अटपटा लगता है। इसका तर्क यद्यपि कार्य की कठोर रूपरेखा में स्वतंत्रता का अवरोध करना नहीं है, इसके विपरीत इसके भव्य सुर की सरलता में धार्मिक अनुष्ठान हमारे लिए कठोर क्रियाकलापों को परिभाषित करते और हमें उन बातों की ओर अग्रसर करते हैं जो जरूरी है। इस भांति हम कार्य के एक दूसरे आयाम की खोज करते हैं जो उत्पादक के हिसाब तथा समय और स्थल के अनुभव से नहीं चलता है। धार्मिक अनुष्ठान में हम मुफ्त में मिलने वाले तर्क का अनुभव करते हैं। हम एक ठहराव को पाते जो हमारे हृदयों का निर्माण फिर से करता है। हम इस बात का अनुभव करते हैं कि हम दिव्य कृपा से पोषित किए जाते हैं। हम एक ताल में जीना सीखते हैं जिसमें पवित्र आत्मा निवास करते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि धार्मिक अनुष्ठान का व्याकरण हमारे लिए चिन्हों और प्रतीकों के ताने बाने से बुना गया है, जो धर्म विधि का भाग है। इसमें जैसे कि धर्म सभा हमें कहती है, व्यक्ति का पवित्रीकरण इंद्रियों द्वारा अनुभव किए जाने वाले संकेतों के अनुरूप होता है और इन संकेतों का प्रभाव को हम मेल खाने वाले चिन्हों में पाते हैं। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा इन चिन्हों के महत्व के बारे में याद दिलाते हुए कहती है कि उनका अर्थ सृष्टि में उनकी रचना और मानव की संस्कृति पर आधारित है, जो विशेषकर प्राचीन विधान की घटनाओं से परिभाषित है और जो पूर्ण रूपेण यीशु ख्रीस्त और उनके कार्यों में प्रकट होता है। पानी की निशानी सृष्टि के शुरू से लेकर जल प्रलय तक, लाल समुद्र से पार होकर यर्दन तक और फिर यीशु ख्रीस्त की बगल से प्रवाहित होने वाले जल तक, जो हमारे लिए यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान में संस्कारीय रूप में डूबे जाने की निशानी है। चिन्ह और प्रतीक हमारे लिए दो शब्द हैं जिनका उपयोग सदैव एक दूसरे के लिए होता है। वास्तव में एक चिन्ह हमारे लिए प्रतीक है जब वह अपने में न केवल एक विचार बल्कि संपूर्ण प्रणाली के अर्थ और मूल्यों की ओर हमारा ध्यान इंगित कराता है। इस भांति उदाहरण के लिए, जब हम सबों पर पवित्र जल छिड़का जाता है तो यह हमारे बपतिस्मा में प्राप्त उपहार और यीशु ख्रीस्त में हमारे समर्पित जीवन की सचेतना को जागृत करता है। दूसरे निशानियों को हम मुख्यतः व्यवहारिक रूप से प्राकृतिक पाते हैं, जो सबसे पहले और सबसे जरूरी काम होते हैं। कुछ साधारण और सामान्य निशानी जैसे कि घुटनी टेकना और शांति अभिवादन देना या अधिक मांग करने वाले जैसे हर संस्कार के कार्यों को हम पाते हैं। इन सारी चीजों से बढ़कर निशानियों को हम एक अद्वितीय प्रदर्शनकारी और परिवर्तनकारी आयाम स्वरूप पाते हैं, जिनका संबंध भौतिक चीजों से है, जिनके द्वारा वे बने हैं और जिनका उनके संग संपर्क होता है या जुड़े होने के भाव उत्पन्न करते हैं। यह उनके मन और दिल का स्पर्श करता और उन्हें कलीसिया के सच्चे संबंधों की ओर उन्मुख करता है। संत पापा लियो ने कहा,
0: Nella lettera apostolica Desiderio Desideravi, Papa Francesco, facendo proprio un'affermazione di Romano Guardini, individuava il primo compito del lavoro di formazione liturgica.
1: प्रेरितिक प्रबोधन Desiderio Desideravi में संत पापा फ्रांसिस रोमानो गुआर्दिनी की बातों को उद्धृत करते हैं। धर्म विधि का प्रथम प्रशिक्षण कार्य, मानव को चाहिए कि वह पुनः एक बार प्रतीकों के योग्य बने। हमें अपने को धर्म विधि के अनुष्ठानों से शिक्षित करने की जरूरत है। हमें कोमलता में अपने समारोहों की सुंदरता की देख रेख करने की जरूरत है, बिना मनमानी के। हमें एक वास्तविक रहस्यवाद हेतु समर्पित होने की आवश्यकता है। एक सजीव और धार्मिक धर्म विधि जिसका अनुष्ठान सही रहस्यमय धर्म शिक्षा के माध्यम होता है, यह हर एक में ईश्वर से मिलन हेतु एक सुंदर स्रोत बनता है, जिसे हम देह धारण के तर्क में पाते हैं। यह सिर्फ तब हो सकता है जब व्यक्ति अपने को हृदय

आत्मा और शरीर से शामिल करता है। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सबों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने बुधवार सुबह वाटिकन के संत पापा पॉल षष्ठम सभागार के छोटे कमरे में अमेरिका के कैथोलिक कॉलेजों और विश्वविद्यालय के संघ के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की, जो 2026 रोम सेमिनार के लिए रोम आए हुए हैं। संत पापा ने कहा, जब तक कैथोलिक शिक्षा छात्रों में सच्चाई के लिए सच्चा जुनून नहीं जगाती और सिर्फ दिमागी सच्चाई ही नहीं बल्कि वह सच्चाई जो खुद यीशु ख्रीस्त हैं, हम शायद ही उम्मीद कर सकते हैं कि लोग सच्चाई को पहचानने और उसके अनुसार अपना जीवन बदलने के लिए जरूरी कोशिश करने को तैयार होंगे। संत पापा ने इस बात पर जोर दिया कि कैथोलिक संस्थानों को एक ऐसा जीवंत माहौल कहा जाता है जिसमें ख्रिस्तीय सोच हर विषय और हर बातचीत में शामिल हो। विश्वविद्यालय के अध्यक्षों और रेक्टरों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा, ख्रिस्त के सच्चे शिष्य के तौर पर आपकी असलियत निश्चित रूप से आपको जीवित सुसमाचार को इस तरह से फैलाने में मदद करेगी कि जिन्हें आपको सौंपा गया है वे सच में प्रभु से मिल सकें और कैथोलिक धर्म में उस एकजुट करने वाली सोच को खोज सकें जो सिर्फ सच्चाई ही दे सकती है। संत पापा ने 25 मई को प्रकाशित हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में इंसान की सुरक्षा पर लिखे गए विश्व पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास की रोशनी में आज की दुनिया में कैथोलिक शिक्षा के अहम महत्व के बारे में प्रोफेसरों से कुछ बातें की। सबसे पहले उन्होंने देखा कि शिक्षा की दुनिया अभी ज्ञान के बढ़ते बंटवारे का सामना कर रही है। हालांकि ऐसे लोगों को ढूंढना आसान है जो पढ़ाई के किसी खास क्षेत्र में विशेषज्ञ हों, लेकिन इनमें से कई लोग अपनी जिंदगी में दिशा ढूंढने के लिए संघर्ष करते हैं। उन्होंने कहा, इस मामले में कैथोलिक शिक्षा की खास तौर पर अहम भूमिका है। संत पापा ने प्रोफेसरों को प्रोत्साहन दिया कि जब युवा लड़के लड़कियां आपके कॉलेज और विश्वविद्यालय में कोई खास डिग्री पढ़ने आते हैं तो वे अक्सर भविष्य में नौकरी की उम्मीदों से प्रेरित होकर आते हैं। प्रोफेसर ज्ञान की उस इच्छा का मार्गदर्शन करने के अपने नेक काम में लगे रहें ताकि छात्र सत्य को खोजना और उससे प्यार करना, जीवन के मतलब पर सोचना और हर इंसान की गरिमा को पहचानना सीख सकें। और संत पापा लियो 14वें ने संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में बुधवार ये आम दर्शन समारोह के दौरान तीर्थयात्रियों का अभिवादन कर याद दिलाया कि इस सप्ताह गुरुवार को कलीसिया मसीह के पवित्र शरीर और रक्त का त्यौहार कॉर्पस क्रिस्टी मना रही है। संत पापा ने विश्वासियों को इस परंपरा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, कई शहरों और देशों की सड़कों पर पवित्र संस्कार के साथ होने वाले जुलूसों को लोकप्रिय यूखरिस्त भक्ति की झलक मिलती है। इस बारे में मैं आपको विश्वास के लिए सार्वजनिक गवाही के इस खूबसूरत प्रदर्शन को जिंदा रखने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। यूखरिस्त में हम यीशु के बारे में सोचते हैं जो हम में से हर एक के लिए तोड़ी और दी गई रोटी है। विश्वासियों को अपने अभिवादन में संत पापा ने मध्य पूर्व में सेवा कर रहे पुरोहितों और धर्म संघियों के प्रति अपनी खास करीबी शब्द कहे। मैं अपनी प्रार्थना और आशीर्वाद के साथ आपकी सेवा के कार्यों और आपके अपने देशों की उम्मीदों के साथ हूँ। संत पापा ने येसु के पवित्र हृदय की पुत्रियों, मोंटफोर्ट परिवार के सदस्यों और सेनाकल की माता मरियम की धर्म बहनों को भी बधाई दी और उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे उन सभी के लिए उम्मीद की निशानी बने जो ईश्वर और उनकी सच्चाई और उनकी शांति के प्यासे हैं। और संत पापा लियो 14वें ने दुनिया भर के कैथोलिकों से इस जून महीने में खेल के महत्व के लिए प्रार्थना करने में उनके साथ शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने मंगलवार को महीने का संत पापा के साथ प्रार्थना करे वीडियो जारी किया, जिसे संत पापा के विश्वव्यापी प्रार्थना नेटवर्क ने तैयार किया है। अपनी प्रार्थना में संत पापा ने खेल की दुनिया में बड़े फायदों के साथ साथ अंदरूनी चुनौतियों को भी पहचाना और प्रार्थना की कि खेल कार्यक्रम शांति और भाईचारे को बढ़ावा दे। वे खेल के उपहार के लिए
उन लोगों के लिए जो अपने शारीरिक अभ्यास द्वारा ईश्वर की महिमा करते हैं, खेल मैदान पर पैदा हुई दोस्ती के लिए और एक टीम के रूप में खेल की खुशी के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि संत पापा लियो याद करते हैं, प्रभु हमें सिखाते हैं कि जीवन में जैसे खेल में कोई भी अकेला नहीं बचता। संत पापा जोर देते हैं कि हमें बढ़ने, सम्मान देना सीखने, अपनी सीमाओं को पार करने और अपनी जीत की खुशी साथ मिलकर मनाने के लिए दूसरों की जरूरत होती है। इस तरह संत पापा लियो प्रार्थना करते हैं कि खेल हमेशा भाईचारे का स्कूल बने, खोखली दुश्मनी का नहीं, मिलने जुलने की जगह हो, अलग थलग करने का नहीं, शांति का रास्ता हो, हिंसा का नहीं। और संत पापा लियो 14वें ने 2026 में सृष्टि की देखभाल हेतु विश्व प्रार्थना दिवस के लिए विषय नबी ईशायाह के ग्रंथ से अध्याय 2 पद संख्या 4, वे अपनी तलवारों को हल के फाल और अपने भालों को हसिया बना लेंगे को चुना है, जिसे पारंपरिक रूप से 1 सितंबर को मनाया जाता है। समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए बने विभाग के बयान में विभाग ने घोषणा करते हुए कहा है कि इस दिन के लिए संत पापा का संदेश हथियारों की लड़ाई और पर्यावरण के नुकसान के बीच संबंध को दिखाता है। उधर यूक्रेन ने व्लादिमीर पुतिन की स्पीक फोरम की शुरुआत में रूस के शहर संत पीटर्सबर्ग में तेल टर्मिनल समेत कई बुनियादी ढांचों पर हमला किया। मास्को ने खेरसान के एक रिहायशी इलाके पर भी मिसाइलें दागी। कल नीपर और आसपास के इलाकों में रूस के भारी हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।